होते नहीं। इसलिए कहने लगे, ये तो करते हो और ये जब कर भी रहे हो तो कैसे करते हो? अधर्म उसमें पका रहे हो, उसका भक्षण भी कर रहे हो, लेकिन अधर्म

नष्ट कर रहे हैं और जो है आगे क्या कर रहे हैं, तो कहा अशुभ कर्म कर। तो शरीर किस लिए प्राप्त हुआ, तो उसके लक्ष्य को न समझ करके और हम ये यज्ञ कर रहे हैं। और कहने लगे इतना ही नहीं, अब इसमें जो है इस सुंदर भूमि बना करके और सुंदर जो है फसल तैयार, सुंदर फल की प्राप्ति करने के लिए और साधन मिला है, तो ये मन ही जो है वो क्या है, मन यद्यपि स्वर्ण के समान पवित्र है। जैसे स्वर्ण पवित्र होता है वैसे ही हमारा मन भी, हम मन से सुंदर संकल्प कर सकते हैं, हैं? तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, लेकिन हम वो शिव संकल्प न करके और अशिव संकल्प ही करते रहे तो और अशिव ही संकल्प होते। भगवान परमात्मा का संकल्प कहां बन पाता, सारे संकल्प हमारे जो बनते हैं वो क्या है, संसार के ही बनते हैं। और संसार क्या है, तो संसार तो अशुभ ही रूप है, सावा असत रूप है, विवर्त रूप है। तो वो संकल्प तो हमारे अंदर होते, एक क्षण के लिए परमात्मा का संकल्प आता भी है, लेकिन तुरंत जो है विकल्प खड़े हो जाते हैं और संसार के ही विकल्प हमारे सामने आ जाते। तो इसलिए कहा कि मन मिला है हमें किसके लिए, इस हृदय रूपी भूमि को जोत करके, मन विचार के द्वारा, और विचार के द्वारा, विचार ही जोतना है, विचार के द्वारा उसे योग्य बनाना, उसे जो है पात्रता प्रदान करना, और फिर उसमें जो है क्या फल देना है, क्या बीज बोना है, तो उसमें जो है अपने स्वरूप का बोध है, अहम ब्रह्मास्मि आदि सत्य का संकल्प, ये जो है उसमें बीज डालना। लेकिन और वो बीज डालोगे तो सत्य क्या सिखाता, सर्वत्र सौहार्द, सर्वत्र प्रेम, ये सब सत्य का धर्म है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके विपरीत, आग क्या करता है, आग जो है आग का दूध आपके हाथ में लग जाए और उसका हाथ आपकी आंख में लग जाए तो क्या कर देता है, आंख को ही समाप्त कर देता है, आपकी दृष्टि को ही समाप्त कर देता है। तो जिसमें जो है हमें सुंदर जो है फल बोना चाहिए, सुंदर बीज बोना चाहिए, वो न बो करके हम क्या बो रहे हैं, केसर बोना चाहिए, कस्तूरी बोना चाहिए, वो न बो करके क्या बो रहे, कहा आग। और आग क्या करता, तो दृष्टि को ही ले बैठता, तो वो क्या है, ईर्षा। सर्वत्र हमारा वैमनस्य ईर्षा के बीज हम उस अंतःकरण में डाल रहे हैं, उसमें जोत करके और वो डाल रहे हैं, जिसका परिणाम क्या होता, हमारा विवेक ही समाप्त, विवेक ही नहीं रह जाता, वो हमारी विवेक ईर्षा हमारी विवेक दृष्टि को ही समाप्त कर देती। और कहने लगे इतना ही नहीं, और भी प्राप्त हुआ, कितना प्रसाद मिला, चित्त्वा कर्पूर खंडान वृत्तमिह कुरते कोद्रवाणम समन्ता। बढ़िया भीमसेनी कपूर है, जिसको भून करके आटे में डाल दो तो आटा कैसा हो जाता, सुगंधित हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। जिसको पहले लोग प्रसाद में बनाते थे, सत्यनारायण की कथा करते थे, तो उस कपूर आदि को डाल करके आटा को भून के ही प्रसाद बनाते, और उसको जो है ग्रामीण क्षेत्रों में तो वो बहुत स्वादिष्ट हो जाता। तो जिस कर्पूर के द्वारा वो आटा भी सुगंधित और स्वादपूर्ण हो जाता, ऐसा हमें जो है मिला हुआ है कर्पूर के समान क्या, बुद्धि। बुद्धि भी हमारी कर्पूर के समान सुख देने वाली पवित्र है। तो चित्त्वा कर्पूर खंडन, वो बुद्धि तो हमारे पास है, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग हम कहां कर रहे, उस बुद्धि को हम किस में लगा रहे, तो कहले को द्रवाणम समन्ता, अत्यंत तुच्छ जो अनाज जो है, है? उस अनाज की सुरक्षा के लिए कीड़े उसमें न पड़े, इसलिए जो है उसमें हम उसका प्रयोग कर रहे। अब संकेत किया चित्त्वा कर्पूर खंडान वृत्तमिह कुरते कोद्रवाणम समन्ता, अब वृत्ति वहां क्या बनानी चाहिए, क्या वृत्ति करनी चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे। वह बुद्धि हमें मिली है किसके लिए, अभेद ज्ञान के लिए। अभेद ज्ञान की हम प्राप्ति करें, हमारे जीवन में अभेदत्व आए, समाज में भी हम एकता को प्राप्त हों, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस बुद्धि का प्रयोग किसमें कर रहे हैं, कि कितना अधिक से अधिक हम वेद डाल सकें, वेद डाल

0: करना सरल है लेकिन अभेद करना बड़ा कठिन। तो बुद्धि हमें प्राप्त हुई है अभेदक ज्ञान के लिए, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग हम किसमें कर रहे हैं? कहा वेदक ज्ञान, माने खंड करना, खंडों में अखंडता को न करके हम जो है खंड करते। और आप जानते हो एक दृष्टांत महात्मा लोग देते ना, भेद कितनी जल्दी पड़ जाता। कहा एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी में भेद डालने के लिए, दोनों पत्नी दंपति बड़े सुखपूर्वक रह रहे, लेकिन उसको ईर्ष्या हो गई, तो उसने कहा इसमें भेद डाल दें। तो उसने कहा भेद डालने के लिए क्या किया? अब देखो बुद्धि का प्रयोग, इसमें बुद्धि सफल हो जाती। लेकिन जहां दो झगड़ रहे हो, जहां दो में विपरीतता हो, वहां एक करना ये बड़ा कठिन। तो उसने कहा जाकर के, अरे पत्नी से कहा तेरा पति तो लूणिया नमकीन है, और उससे कहा जाकर के तेरी पत्नी तो सर्पिणी है। और ऐसा जब कहा, उसने कहा नहीं नहीं, कहा नहीं तो प्रयोग करके देख ले। और उसने प्रयोग किया तो पति भी समझ गया कि हाँ ये सर्पिणी सर्पिणी भी चाटती तो ये भी चाट रही, चाट के देख रही, और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। तो भेद डालना, हम थोड़ा सा संकेत कर दें तो भेद तो तुरंत पड़ जाता है, लेकिन एकत्व करना बड़ा कठिन है। ऐसे ही यहां पर भी अवेदक ज्ञान के लिए आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जो अवेदक ज्ञान है, इस अवेदक ज्ञान को करने के लिए हमें बुद्धि मिली है, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग हम किसमें लगा रहे हैं? भेद ज्ञान। कितना भी हम चर्चा करते हैं लेकिन फिर भी बुद्धि दौड़ के कहां जाती? भेद ज्ञान में ही जाती। अवेद ज्ञान को जो है ग्रहण करना बड़ा कठिन हो जाता। और ये संकेत करते हुए अंत में उपसंहार करते हुए वर्तरी ने लिखा, प्राप्त इमाम कर्मभूमि, संकेत कर दिया ये कर्मभूमि, यद्यपि कर्म की निंदा भी की गई लेकिन यहां संकेत करते हैं, प्राप्त इमाम कर्मभूमि, ये शरीर क्या है? कहने लगे ये कर्मभूमि है। ये क्या है? कर्मभूमि। जैसा कर्म करोगे उसी के अनुसार तुम्हें फल की प्राप्ति हो जाए। और इस कर्मभूमि में साधन भी तुम्हें दिए हैं बहुत सुंदर, बुद्धि मन आदि, जिनके द्वारा तुम उत्तम से उत्तम वस्तु की प्राप्ति कर सकते हो। चाहो तो वेद ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, और न चाहो तो है वेद में ही वर्त करके और जीवन को जो है सहांद में ला जा सकते हो। तो ये संकेत किया, तो प्राप्य माम कर्म भूमि न चरति, इस ऐसी कर्म भूमि को प्राप्त करके भी और आचरण करने में असमर्थ रहता है, आचरण नहीं कर पाता है, प्रयास करते हुए भी और फिसल जाता है, प्रयास करता है लेकिन प्रयास करते हुए भी सफल नहीं हो पाता है। तो क्या है? कहने लगी यस तपो मंद भाग्य, जीवन में तप नहीं है, यही उसकी मंदता है। कहा तप क्या है? तो तप के लिए कहा मनश्चेन्द्रियाणाम ऐकाग्र्यम इति तपः, शरीर को धूप में सुखाने का नाम तप नहीं, शरीर का कर्षण करना तप नहीं। तब तप क्या है? भगवत पादाचार्य आचार्य शंकर ने तप का लक्षण किया। कहने लगी तप क्या है? तो कहने लगी मनश्चेन्द्रियाणाम ऐकाग्र्यम इति तपः, हमारा मन जो हमें ये साधन प्राप्त हुए और इंद्रिय आदि, ये हमारा अंतःकरण और हमारी इंद्रियां कहां लगे? तो कहने लगे जो अग्र है, उस अग्र में मन और इंद्रियों को जो एक है और अग्र, एक एकाग्रम एक है और अग्र है, उसमें मन को लगाने का नाम ही है क्या? तप। और यदि ये तप हो जाता है तो तप ही क्या करता है? कहने लगे हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता, हमारी बुद्धि को शुद्ध करता। और ये जब हम तप करते हैं, उसमें जब लगाते हैं, तो उसके उपाय क्या है? तो उसके लिए संकेत किया कि वो एक क्या है, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए ही जो है ये उपदेश आदि की प्रक्रिया है, आचार्य आदि की प्रक्रिया है, शास्त्र आदि उसके साधन है। यदि उसे हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम मार्ग पर चल पड़ते हैं। एक ट्रैफिक लाल बत्ती है, हरी बत्ती और वहां ट्रैफिक का सिपाही भी खड़ा, बोर्ड भी लगा, तीर भी बना दिया, क्या कहा कि अमुक मार्ग अमुक जगह जा रहा है ना, और अमुक मार्ग अमुक जगह जा रहा है, आपने बोर्ड पढ़ लिया, उसके तीर के संकेत को देख लिया और उसके अनुसार यदि आप मार्ग का मार्गन करते हो तो क्या पहुंचते हो अपने लक्ष्य पर। लेकिन वहीं पर एक बात और, क्या कहा, वो बत्तियां लगी लाल और हरी, वो क्या संकेत करती, मार्ग तो है लेकिन अभी रुक जाओ, और नहीं तो वो सिपाही खड़ा हुआ है वो क्या करता, वो इधर करेगा, इधर करेगा, ये करेगा, इधर जाओ, रोकेगा, तो क्या करता, विधि और निषेध कर, कब तुम्हें चलना है कब नहीं चलना। मार्ग तो सही है लेकिन मार्ग पर चलने के लिए भी वहां पर जो है विधि और निषेध करती है। ठीक इसी प्रकार से यदि उसको आप, उस नियम को आप जो है स्वीकार करते हो तो आप जो है निर्विघ्न है रूप में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हो, और यदि आप उसको स्वीकार नहीं करते हो और चल पड़ते हो तो कुछ नहीं होगा, तो चालान तो हो ही जाएगा है, कुछ भी नहीं होगा तो चालान तो दंड तो मिलेगा, और जो है कार्य में कहीं बाधा भी आ सकती है, आपने छोड़ दिया उधर से दूसरा आ गया तो ये सब होगा। इसी प्रकार से यहां संसार के अंतर्गत ये आचार्य को भी अर्थात तो ट्रैफिक के सिपाही की भी बात को मानना चाहिए, किस लिए, जीवन को सुचारू रूप से चल। ऐसे ही यहां पर ट्रैफिक का सिपाही यदि खड़ा हो पिए शराब तो भी क्या होगा, तो भी बात नहीं बनेगी, तो दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। तो यहां भी संकेत वही करते हैं कि आचार की प्रसादता भी होनी चाहिए, ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए, शास्त्र की कृपा भी होनी चाहिए और अपनी कृपा भी, जब चारों कृपाएं मिल जाती हैं तो हमारा काम ठीक, तो ये संकेत किया। अब यहां जो है ऋषि कहता है आचार प्रसादता, आचार की तो प्रसन्नता है, आचार का प्रसाद है, आचार की कृपा है, क्योंकि इतने गूढ़तम, इतने रहस्यात्मक उस सार को उन्होंने जो है हमारे लिए है एक सरलीकरण करके, शोध करके और उन्होंने हमारे लिए रखा है, तो ये उनका क्या है, प्रसाद। इसलिए संकेत किया कि उन्होंने भाष्य करके इस स्तुति पर, उपनिषद पर हमारे ऊपर जो प्रसाद में दिया है, अपनी कृपा जो की है, उनके प्रसाद से ही अब हम क्या कर रहे हैं। कहा उन्होंने दे तो दिया है तो सार, लेकिन सार में से भी ग्रहण करना, उस सार को कैसे ग्रहण किया जाए, सरलता से कैसे प्राप्त हो, इसके लिए जो है हम उपाय कर रहे हैं। सार तो मिल जाए लेकिन सार को जब तक ग्रहण नहीं कर पाओगे तब तक भी वो सार क्या करेगा है? सुंदर घी मिल गया, और घी नहीं, इस सार को तत्व शब्द से कहा, श्वेता सेतु उपनिषद में वहां मंड शब्द आया, कहा मंड निव, वो सार कैसा है, कहा मंड की तरह, और मंड क्या होता, वहां पर तत्व शब्द से, सार शब्द से संकेत किया, वहां उद्धरण दिया कि मंड विव, मंड की तरह से, ये श्वेता सेतु उपनिषद में ऐसा स्वाध्याय भी आप लोग करते रहे तो उसमें आया है कि मंड विव, वो मंड क्या है, तो ये कोई गहन बातें नहीं, आप मंड किसे कहते हैं तो वहां समझना है कि शब्द का अर्थ क्या, यही आचार्य अत्यामियों की कृपा हो। वहां पर जो है जैसे आप बढ़िया दूध गऊ का निकलवा के लाए, आपने गर्म किया, गर्म की करे ठंडा किया, जामन लगा दिया, दही बन गया, दही करके उसे बिलो लिया, बिलो करके मक्खन निकाल लिया, मक्खन को गर्म किया, घी बन गया, और फिर आप जब घी को गर्म करते हो और गर्म करके उस घी को ठंडाने रख देते हो तो क्या होता है, आप कभी ध्यान से देखें, आपका जो शुद्ध घी है और गर्म आपने करके रखा और जेंजो ठंडाता जाता, तो जैसे दूध में एक मोटी परत ऊपर आ जाती है जिसे मलाई कहते हो, वैसे ही उस शुद्ध घी में इतनी क्रिया के होने के बाद और उस घी पर एक बारीक परत आ जाती, उस घी पर जो बारीक परत आती है उस परत का ही नाम क्या है, मंड है, और कोई मंड नहीं। और वो जो है वो कब निकला, कितने प्रयास के बाद वो निकला और कितना अंश में निकला, थोड़े अंश, तो वो है उसका सार, वो है उसका तत्व, और उस सार को निकालने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा, लेकिन वो जो है घी में भी स्वाद को देने वाला वो मंड ही है, दूध में भी स्वाद को देने वाला भी वो मंड ही है, और जो है इसी प्रकार से दही में भी स्वाद देने वाला वो मंड था, मक्खन में भी स्वाद देने वाला वो सब में व्याप्त था। लेकिन निकला कब जाकर के, कितने परिश्रम के, तो उसी के स्वाद से वो सारा दूध दही आदि स्वादिष्ट था। इसी प्रकार से ये सारा का सारा संसार जो हमें प्रेम का आस्पद लग रहा है, और प्रेम कहां होता, संसार में जितने पदार्थ में स्वाद से युक्त लगते हैं उनसे तो प्रेम होता, और जिनमें स्वाद न हो तो क्या उनमें प्रेम लगेगा। तो जहां सुख समझते हो, जहां स्वाद समझते हो, वही तुम्हारा प्रेम होता है। तो अब स्वाद किसको बल को लेकर के, तो कहा तत्व को लेकर के। ठीक इसी प्रकार से जहां पर भी आपको सुखानुभूति होती है, इसलिए विषयानंद को भी पंचदशी में वर्णन किया, वहां भी वो भी आभास जो है वो किसका है, कहने लगे उसी का। यम आत्मा परानंद परम प्रेमास्पदम यतः, वो जो आत्मा है वही परम प्रेमास्पद का विषय है, वही सार रूप है, और ऐसे उसके लेकर के ही सर्वत्र जो है स्वाद आनंद सुखाद की प्रतीति होती है। लेकिन उसको निकाले कैसे, वो आएगा कैसे, तब उसके लिए कहा आचार्य प्रसादतः, आचार्य की प्रसन्नता से, आचार्य की कृपा हो, और आचार्य की कृपा ही नहीं अपनी ही कृपा हो, इसलिए कहा है न चरति यस तपो मंद भाग्यात, हमको भी अपना तप करना, क्योंकि ये कर्म भूमि हमें जो प्राप्त हुई है, ये साधन हमें जो प्राप्त हुआ है, उस साधन का सदुपयोग हमें भी करना। और जब इस प्रकार से साधन का हम सदुपयोग करते हैं तो आचार की कृपा से वो सार तत्व हमारे सामने आता है, और जब सार तत्व सामने आता है तो हम उसे ग्रहण करने में फिर समर्थ भी होते हैं, और समर्थ होते हैं तो सर्वत्र हमारे लिए भय की निवृत्ति, दुखों की निवृत्ति हो जाती। इसलिए यहां पर भी संकेत यही करते कि जो है ये तैतीरिक उपनिषद का जो सार है, इसका जो वास्तविक तात्पर्य है, उस तात्पर्य को यहां पर जो है बतलाने जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कैसे, तो आचार्य के प्रसाद से। और एक ध्यान और रखना, ये सब कहा कि शास्त्र में तो लोग हम सुन लेते हैं वेदांत आदि के, शरीर को भी मिथ्या का, संसार को भी मिथ्या का, तो इनकी क्या उपयोगिता, इनसे तो दूर होना चाहिए, लेकिन नहीं, इनकी उपयोगिता है, सर्वथा उपयोगिता नहीं, उपयोगिता है कब तक है, बढ़िया हापुस आम है 5000 की पेटी लेके आए, और जब लेके आए तो उसका रस निकाल लिया। अब रस निकाल लिया तो क्या फिर ये कहते हो रस तो आप अपने फ्रिज में रख लेते या उसे ग्रहण कर लेते, लेकिन जो छिलके और गुठली हैं उनको क्या करते है, फेंक देते हो, क्या कहते हो, तब ये नहीं कहते वो भी तो 5000 में ही थे, उनकी भी उस समय कीमत 5000 में थी, लेकिन जब उसमें से सार निकाल लिया तब वो व्यर्थ होते हैं, और जब तक उसमें से वह सार नहीं निकला तब तक उनकी भी उपयोगिता है, क्योंकि सार को सुरक्षित रखने में तब तक वो भी काम, और उसी से सार निकलेगा, बगैर उसके सार निकल भी नहीं सकता। ऐसे ही है इस शरीर आदि भी तब तक जो है सार्थक है जब तक आपने तात्पर्य को निकाला नहीं, और जब इसमें से जो तात्पर्य जब निकल जाता है उस समय ये शरीर भी निस्सार हो जाता। जैसे आपको गुठली में आसक्ति नहीं रह जाती, छिलके में आसक्ति नहीं रह जाती, उस समय संसार से और शरीर आदि से भी आसक्ति निवृत्त हो जाती है, ऐसा संकेत है। तो ऐसे सार की तरफ संकेत किया गया, अब आगे चर्चा कल करेंगे।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल म्यूजिक। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवकृति। द टाइटल इज भो शंभो, प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर बी उमाशंकर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द फॉलोइंग इज ऋग्वेदा சாக்கல சாக்கா மண்டலம் 1 சூக்தம் 73. தேங்க்யூ.

नमो निषङ्गिना इषु धिमते तस्काराणाम् पताये नमः। नमसृकायिभ्यो जिघा अज्ञ सद्भ्योमुष्णताम् पताये नमो नमो

अनुपश्यः द्रष्टा द सीयर दृशि मात्रः इज ओनली द सीइंग दो ही इज जस्ट ओनली द सीइंग द सीयर इज ओनली दैट एक्सपीरियंस शुद्धोपि ही दो इज प्योर प्रत्यया अनुपश्यः ही इज सो सीन थ्रू द थॉट फंक्शंस थ्रू द बुद्धि दृशि मात्रः इति दृशि मात्र मीन्स दृश्य शक्तिरेव द सीइंग ओनली दृशि मात्र मीन्स ही इज द सीयर द सीयर इज द सीइंग देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सीयर एंड द सीइंग विशेष अपरामृष्ट अपरामृष्ट इत्यर्थ विशेष अपरामृष्ट इत्यर्थ सो देयर इज नो विशेषास इन दिस काइंड ऑफ रिमेंबरेंस धर्माः विशेषास मीन्स दिस धर्म स्पेशल क्वालिटीज सो ओनली थ्रू दैट ही कैन बी गेन्ड स पुरुषो बुद्धेः प्रतिसंवेदि ही दैट सीयर इज द वन हू इज द प्रतिसंवेदि एक्सपीरियंसर ऑफ द बुद्धि हू इज द सीयर ऑफ द बुद्धि विटनेस ऑफ द बुद्धि दैट पुरुषा इज द विटनेस ऑफ द बुद्धि इज द विटनेस ऑफ द जगत बुद्धि इज द वन विच ग्रास्प द होल एक्सपीरियंस ऑफ द जगत एंड दिस सीयर The Purusha is the one who is the witness of this buddhi also. Sa buddhehe na sarupa na atyantam virupa iti. And what is the nature of that Purusha? Is he similar to buddhi? Because buddhi is the one which experiences the jagat. So he experiences buddhi. Therefore, is he of the nature of buddhi, similar to buddhi? Or the buddhi experiences the jagat. But the Purusha is not tainted by jagat. Therefore, is he totally different from the buddhi you ask he says san buddhehe na sarupah na atyantam virupayati he is neither similar to buddhi nor totally different from buddhi na tat tavat sarupah why do you say this he is not similar kasmat vai jnata ajnata vishyatvat parinamihi buddhi tasyasya vishayo gavadihi gata nirva jnatascha ajnatascheti parinaminam parinamitvam darshayati सदा अज्ञात विषयत्वं तु पुरुषस्य अपरिणामित्वं परिदीप्यति.

0: पंचस्तम शत नमः।
1: ओम
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
3: ओम नमः शिवाय।
4: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो The 24/7 spiritual channel from shivam.org.
3: Om Namah Shivaya.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Sundaramurthy Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम जिस महान संत या शिव भक्त की कहानी सुनेंगे उनका नाम सुंदरमूर्ति नायनार है। अपर यानी कि तिरुनावकासुर जिस तिरुमुनई पाड़ी क्षेत्र में अवतरित हुए थे उस पावन क्षेत्र के तिरुनावलूर में शैव द्विज कुल में चडेनार के पुत्र के रूप में नंबियारूर यानी कि सुंदरमूर्ति नायनार का जन्म हुआ था। नंबियारूर का विवाह पुत्तूर के चंड कवि शिवाचारी की पुत्री के साथ संपन्न होने वाला था कि विवाह मंडप में एक वृद्ध ने आकर विवाह संस्कार रुकवा दिया। उन्होंने एक ताड़पत्र दिखाया जिसमें नंबियारूर के दादा ने लिख कर दिया था कि वे और उनकी संतति उस वृद्ध के दास हैं। पंचायत में इस ताड़पत्र को दिखाकर ग्राम सभा में वृद्ध ने अपने पक्ष में निर्णय करवा लिया। यह एक विचित्र बात थी कि एक ब्राह्मण को दूसरे ब्राह्मण ने दास बना लिया। लोगों के पूछने पर कि वे ब्राह्मण कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, वे शिव मंदिर में जाकर अंतर्धान हो गए। नंबियारूर समझ गए कि मुझे दास बनाने वाला स्वयं भगवान ही है। उन्होंने वृद्ध के महत्व को जाने बिना उन्हें पागल विकंदावादी कहा था। इस पर वे पश्चाताप करने लगे। आरूरल के समक्ष पवित्र वेदों के उद्घोषक शिवजी ने आकाशवाणी की, चूंकि तुमने बड़े बड़े बोलों से हमें गाली दी थी इसलिए बड़बोले भक्त बनकर तमिल भाषा में हमारी स्तुति करो। नंबियारो ने अपनी लघुता और प्रभु की महानता पर विचार करते हुए पूछा, तुम्हें किन शब्दों से गाऊं हे प्रभु? भगवान ने कहा, तुमने मुझे पागल कहा था इसलिए उसी नाम से प्रारंभ करो। इस आदेश को स्वीकार करते हुए सुंदरमूर्ति ने स्तुति गान शुरू किया। पित्ता यानी कि पागल, पिरेचूड़ी यानी कि चंद्रकला धारण करने वाले, पिरमान मतलब हे महाप्रभु, इस वाक्य से उन्होंने अपने गायन की शुरुआत की थी। नंबियारूर समझ गए थे कि भगवान ने उन्हें अपने दास के रूप में स्वीकार कर लिया है और उनका उद्धार किया है। वे भिन्न भिन्न धामों में जाकर भगवान शिव का कीर्तिगान करने लगे। इसी क्रम में वे तिरुवारूर पहुंचे और भगवान के संकेत से देवदासी कुल में उत्पन्न परवयार नामक कन्या से विवाह करके वहीं रहने लगे। तिरुवारूर के प्रवास काल में नंबियारूर प्रतिदिन मंदिर में वाल्मीकि नाथ शिवजी के दर्शन के लिए जाया करते थे। मंदिर में प्रवेश करते ही वे द्वार से थोड़ी दूर बने देवाचार्य मंडप में रहने वाले भक्तों की वंदना किए बिना अंदर चले जा रहे थे। वहां बैठे पिरन मिंडर नामक भक्त ने जब यह देखा तो घोषणा की, देवाचार्य मंडप में निवास करने वाले शिव भक्तों की वंदना किए बिना उनकी अवहेलना करने वाले बड़बोले भक्त को मैं बहिष्कार करता हूँ और ऐसे भक्त को अपना दास बनाने के लिए ग्राम सभा में बात करने वाले भगवान को भी मैं बहिष्कार करता हूँ। वास्तव में सुंदर स्वयं को प्रभु के दासों के चरणों के योग्य भी नहीं समझते थे, पर यह घोषणा सुनकर भक्तों के प्रति बार बार दंडवत प्रणाम करने के बाद उन्होंने फिर तोंड तो गई यानी कि भगवान के भक्तों की मंडली का स्तुतिगान किया जो कि तिल्लईवाल अंदनर्तम।

0: अडियारकुम अडियेन पंक्ति से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है मैं तिल्लई यानी कि चिदंबरम के निवासी भक्तों के दासों का भी दास हूँ। इस स्तुतिगान में प्राचीन काल के और अपने युग के भी 63 प्रभु भक्तों का नाम गुण सहित गायन कर उन्होंने रेखांकित किया कि मैं सभी भक्तों का दासानुदास हूँ। इसके बाद परवैयार के साथ जीवन व्यतीत करते हुए सुंदरमूर्ति नायनार को चेरभूमि के भक्त भगवान के अनन्य सेवक वहां के नरेश चेरमान पेरुमाल की मैत्री का लाभ हुआ। ये अनेक बार वहां से चेरभूमि गए और उनके साथ कुछ समय व्यतीत कर तिरुवारूर लौटे। चेरमान पेरुमाल भी सुंदरमूर्ति से मिलने अनेक बार तिरुवारूर आए थे। विविध स्थानों पर जाकर प्रभु विग्रहों के समक्ष स्तुतिगान करते हुए सुंदरर जब तिरुवोट्टियूर में पड़म पक्कनाथ शिवजी के दर्शन करके लौट रहे थे तो मार्ग में इनकी भेंट चंगिलियार नामक देलाल कुल की कन्या से हुई। चंगिलियार को पत्नी रूप में पाने की अभिलाषा प्रबल रूप से उनके हृदय में जागृत हुई। वे भगवान से इसके लिए अनुरोध करने लगे। अपने मित्र को संकट में फंसाकर उसी में आनंद लूटने की इच्छा से भगवान ने एक खेल खेला। चंगिलियार ने नंबियारूर से कहा कि मैं इस शर्त पर आपसे विवाह करूंगी कि आप वचन दें कि मुझे कि मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा। नंबियारूर ने प्रेमवश वह शपथ ले ली। विवाह हो गया। दिन ब दिन बीतते गए। एक दिन उन्हें स्मरण आया, तिरुवारूर में बसने वाले भगवान को मेरे अपने मित्र को मैं कैसे भूल गया। वे तुरंत ही तिरुवारूर के लिए चल पड़े। शपथ का उल्लंघन करने के कारण तिरुवोट्टियूर की सीमा पार करते ही आरूर की दोनों आंखें दृष्टिहीन हो गईं। फिर भी त्यागेश शिव से मिलने के संकल्प में दृढ़ भाव से नंबियारूर अपने साथियों की सहायता से मार्ग के मंदिरों में स्तुतिगान करते हुए तिरुवारूर की ओर बढ़ते रहे। मार्ग में कांचीपुरम में देवी की कृपा से उनके बाएं नेत्र में ज्योति लौटी। इसके बाद तिरुवारूर पहुंचकर एक आंख से भगवान के दर्शन कर गीत दशक गाया। इसका मूल स्वर था, मैं किसी अन्य के पास न जाने वाला आपका सेवक हूं। जब आपके सेवक भक्त अपने कष्ट और संकट का निवेदन करते हैं तब आप मौन ही रहते हैं। हे तिरुवारूर के प्रभु, आप दीर्घायु हो। गीत दशक के समाप्त होते ही प्रभु कृपा से उनके दूसरे नेत्र की ज्योति भी लौट आई। इसके बाद उन्होंने चिरकाल के विरह से पुष्ट अपनी पत्नी परवैयार को समझाने लगे कि स्वयं भगवान को अपने दूत के रूप में भेजा। परवैयार के विरहजनित रोष को शांत करके फिर उनके साथ रहते हुए वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में कोयम्बतूर के पास अविनाशी में पाया कि एक बालक मगरमच्छ द्वारा निगला जा चुका था। प्रभु स्तुति के गीतों का गायन कर उन्होंने उस बालक को यमलोक से बचाकर मगर द्वारा वापस उगलवा दिया। बच्चे के माता पिता उनके गुणों का गान करने लगे। तदुपरांत सुंदर चेरमान पेरुमाल से मिलने और उनके पास गए और कुछ दिन उनके सत्संग में रहे। चेरभूमि के मंदिरों और तीर्थ स्थलों के दर्शन करते हुए वे तिरुवंचिकुलम पहुंचे और भगवान की सन्निधि में तल्लईकुत तल्लईमाले से प्रारंभ कर 10 पदों का गायन किया। इन पदों में उन्होंने कहा, शिव ने मेरा सृजन किया, उस सृष्टि के रहस्य को जानकर उनके सर्वनिम स्वर्णिम चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए मैंने गीत रचना की। क्या आश्चर्य, कुत्ते सम मुझे सम्मान देकर स्वर्ग निवासी देवताओं में मेरा आदर सत्कार किया। उसी क्षण उनके मन में हिलोक लीला समाप्त कर लेने की इच्छा उत्पन्न हुई। ईश्वर कृपा से तत्काल ही कैलाश से एक धवल वर्ण का हाथी आया जो कि पूरी तरह सफेद था। उस पर आरूढ़ होकर वे देवों के संग कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। इधर चेरमान पेरुमाल ने ज्ञान योग से जान लिया कि मित्र सुंदरर कैलाश की ओर जा रहे हैं। वे भी तुरंत एक घोड़े पर सवार होकर तिरुवंचिकुलम पहुंचे और उस घोड़े के कान में पंचाक्षत मंत्र का उच्चारण किया। तुरंत वह घोड़ा भी श्वेत हाथी का पीछा करते हुए कैलाश की ओर चल पड़ा। दोनों कैलाश पहुंचकर शिव की दिव्य लीला में लीन हुए। इस घटना को एक सहस्त्र से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं पर सुंदर के अलौकिक गुणों और महत्व को संसार अभी पूरी तरह जान नहीं पाया। वे प्रभु की सखा भाव से भक्ति करते थे। जो वेशभूषा अपने विवाह के अवसर पर प्रभु द्वारा दास बनाए गए जाने पर पहने हुए थे, जन्म भर उसी प्रकार की वेशभूषा में रहे। उनका काव्य तमिल के शैव भक्त साहित्य में विशिष्ट स्थान रखता है, पर खेद है कि आज उनके जन्मस्थान नावलूर के मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। उस महान भक्त की स्मृति संजोए रखने के लिए इन मंदिरों का पुनर्निर्माण और सम्यक व्यवस्था आवश्यक है। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: काल ज्यादा बकवास करेगा तो मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा, जा भाग जा यहां से। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी निष्ठा ठीक है, तुमको शिव जी की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने पार्वती ने कहा कब? बोले अभी। ले जी कैसे? बोले ऐसे ही अपना रूप दिखा दिया वहां। चले अब तुझे यही चाहिए था ना? बोले हां, धन्य हो, मुझे यही चाहिए बस। साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। ये सारी भाव इस श्लोक में है। हो भक्त का यही भाव है। सहस्रम वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदः न मन्ने स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृत फलम् हरि ब्रह्मादीना अपि निकट भाजाम असुलभम् चिरं याते शंभो शिव तव पदाम्बोज भजनम्। ब्रह्मा जी आपके नजदीक तो रहते हैं, लेकिन आपकी चरण की सेवा करने का उनको फुर्सत ही नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रह्मा ये न कुलालवन्यमितो ब्रह्मांड भांडोदरे। अरे ब्रह्मा जी के पास इतने जीवात्मा लाइन लगाकर खड़े पहुंच जाते हैं। एक जीवात्मा पहुंचता है, हे परमात्मा मुझे शरीर दो, मुझे अब शरीर दो, जो शरीर आपने दिया था जिस कर्मफल को भोगने के लिए वो कर्मफल भोग चुका हूं, अब दूसरे कर्मफल भोगने के लिए मुझे दूसरा शरीर दो। और ब्रह्मा जी को तुरंत उसको शरीर बनाकर देना पड़ता है। समझे कि नहीं? तुरंत है। जब बरसात का सीजन शुरू होता है छाता बेचने वालों को फुर्सत होगा? है छतरी बेचने वालों को फुर्सत मिलेगा? रात दिन छतरी बेचने लग जाए। जब स्कूल आरंभ होता है तब स्टेशनरी बेचने वालों को फुर्सत होगा? है क्या कहते हैं स्टेशनरी बेचने वाले दुकानदार, क्या कहते हैं? है महाराज अभी फुर्सत नहीं है क्योंकि सब कॉलेज खुल चुके, एडमिशन का समय हुआ, स्कूल चालू हो गया है, ये बेचना है हमको, सप्लाई करना है, उसको देना है, उसको देना है, डिमांड का डिमांड। बेचारे उनको सप्लाई करते ही फुर्सत नहीं है। इसी तरह ब्रह्मा जी को फुर्सत नहीं हो है? एक के बाद दूसरा जी, उसको उसका प्रारब्ध देखा, इसको कौन सा शरीर चाहिए है? मनुष्य का चाहिए तो मनुष्य का सांचे में वो मिट्टी रॉ मेटेरियल, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बना, इसको पांचों भूतों को मिलाकर एक जगह रखा है उन्होंने, फट से उसमें से निकाला, सांचे में डाला, खड़ा कर दिया, ले घुस जा। वो जीव घुस गया। दूसरा कहता है महाराज उसको तो मिल गया शरीर, मुझे भी दे दो। अब उन्होंने फिर मसाला देखा, अब देखा अब उसको, महाराज उसको जो शरीर दिया वो मुझे दो। बोले खबरदार है, क्यों उसको दिया, हमको क्यों नहीं दिया? तेरा प्रारब्ध में वो शरीर नहीं है, तुझे दूसरा शरीर मिलेगा, कौन सा मिलेगा बोलो? कुत्ते का मिलेगा। फिर दूसरा सांचा लिया कुत्ते का डाई, कुत्ते के साथ आकार का वो सांचा लिया, मेटेरियल वही है, मसाला वही है, खाली आकार का फर्क है, मसाला एक ही है भाई। मसाला वही, मसाला में कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखो कड़ी में डालो तो वही नमक है, दाल में डालो तो वही नमक मिर्ची धनिया है, सब्जी में डालो तो वही नमक मिर्ची धनिया, कड़ी में डालो वही नमक मिर्ची धनिया, अचार में डालो वही नमक मिर्ची धनिया। बोलो मसाला कोई दूसरा लाते हो क्या? नाम बदल जाता है, है? इसी तरह ब्रह्मा जी उसको फिर कुत्ते के वो आकार का सांचा ले आया, मसाला वही था, डाल दिया, फट खड़ा कर दिया, घुस जा इसमें जा, वो बेचारा घुस गया, मुझे वो शरीर दो। फिर तीसरा आ गया, मुझे शरीर दो, जैसे देखा इसका कौन प्रारब्ध कौन सा शरीर के लिए अभी प्रारब्ध तैयार है, देखा गड़बड़ करना नहीं है, फिर देखो कितनी सावधानी। उसको ब्रह्मा को शिव जी के चरण दबाने का फुर्सत कहां? बोलो, यदि एक घंटा भी शिव जी के चरण तेल लगाना और मासिल करना यदि चले गए ब्रह्मा जी, तो वहां तो कितने क्यों खड़े हो जाएंगे जीवात्मा हो गए, फिर तो हल्ला करेंगे, आंदोलन करेंगे, हाँ सड़क जाम हो जाएगी, तो वो न हो इसके लिए। अब दूसरी बात, विष्णु को कहां फुर्सत है? ब्रह्मा ने जैसा भी शरीर बनाकर बाहर फेंक दिया स्टेचू, जीवात्मा को उसमें घुसना पड़ा, घुसने के बाद फिर बाकी काम फिर विष्णु को संभालना है कि नहीं? बोलो, अब विष्णु को बड़ी मुश्किल है, वो शरीर को लेकर वो खड़ा हो गया, ऐ करने लगा, फिर दूध तैयार करो बेचारा, वो दूध बनाने वाला कौन? ब्रह्मा तो बनाएगा नहीं दूध, विष्णु बनाएगा, हा? उसको फुर्सत कहां? क्या मजा आ रहा है ना, पैसा वसूल, हमने उस दिन कहा था ना, देखो ये लीला है ईश्वर की, इसी तरह इनका चलता है। इसीलिए विष्णु को भी फुर्सत नहीं, ब्रह्मा को भी फुर्सत नहीं, पार्वती को भी फुर्सत नहीं, दो दो बच्चों का संभालना है, कम खेल नहीं है वो, कार्तिक और गणेश, उसके तो कार्तिक के तो छह मुख हैं, ड्रेस सिलाना होगा तो भी बड़ा मुश्किल से, छह मुख सड़ानन, और खाएगा भी छह मुख से, एक मुख से जितना खाएगा गणेश उसका छह गुना वो खाएगा, रसोई बनाते बनाते हैरान। पार्वती को कहा फुर्सत है शिव की सेवा करने के? तो भक्तों ने कहा महाराज, शंकराचार्य जी कहते महाराज हमको फुर्सत है, हम तो सन्यासी हैं, हम सन्यासी हैं, ना पत्नी है ना कोई है, ना बच्चे है ना बच्चे है, ना बूढ़ी माँ है ना बूढ़ा बाप है, ना कोई है, कुछ नहीं, हम फुर्सत में हैं, इसलिए हमको अपने चरण की सेवा करने के लिए हमको नियुक्त तो करो, हम इसी में खुश रहेंगे महाराज। हरि ब्रह्मादीनाम निकट भाजाम असुलभम ये चिरम याचे शंभो शिव तव पदम भोज भजनम। अम्भ, अम्भ माने जल, अम्भोज माने जल से जो उत्पन्न हुआ, अम्भोज कमल, पद कमल, पद सरोज चरण कमल की सेवा करने, भजन बने भज सेवायाम, सेवा करने का अवसर हमको चाहिए चिरम याते। ऐसा नहीं करना कि एक बार नियुक्ति कर दी फिर बाद में हटा दो, चिरम याते ये कंडीशन है। कब तक? बोले जब तक मैं जीव रहूंगा तब तक आपकी सेवा करूंगा, और आपकी कृपा होकर जीव भाव खत्म हो गया तो फिर मैं शिव स्वयं हो गया, तो फिर जो आप हैं वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप हैं, फिर तो सेवा कराने की करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सेवा कराने की जरूरत नहीं है, मुझे सेवा करने की जरूरत है, ये देख लो, आपको सेवा कराने की जरूरत नहीं है, मुझे सेवा करने की जरूरत है, इसलिए सेवा का अवसर मुझे दे दो। आगे कहते हैं स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये सकुन कविता गान फणितौ पुराणे मंत्रे वा स्तुति नटनः से स्वचतुरः क कथम राज्ञां प्रीतिर् भवति मयि कोऽहं पशुपते पशुं मां सर्वज्ञ प्रथित कृपया पालय विभो। हे विभो, विभो माने व्यापक, विभु व्यापक, आप व्यापक हैं मैं व्याप्य हूं, आप बड़े हैं मैं छोटा हूं, महाकाश व्यापक है घटाकाश व्याप्य है, इसलिए आप व्यापक हैं मैं व्याप्य हूं। हे विभो, मेरे में कोई कुशलता नहीं है, मैं एक संसारी को भी प्रसन्न नहीं कर सकता, एक क्षुद्र राजा को भी खुश करने की कला मुझ में है नहीं, तो संसार में मैं जीऊंगा कैसे, क्योंकि संसार का नियम है वो। स्मृतौ शास्त्रे वेद्ये, कुछ लोग स्मृति शास्त्र को पढ़ते हैं, बड़े स्मृति का ज्ञान रखते हैं, और उन शास्त्र स्मृति का धर्म आदि का मनुस्मृति, हाँ, नारद स्मृति, हाँ, याज्ञवल्क्य स्मृति, इनका सब ज्ञान वाले हैं, वे लोग सबको स्मृति का व्याख्या करते हैं, सुनाते हैं, शिक्षा देते हैं, उसके द्वारा उनका योगक्षेम चलता है, समझ गए ना। मैंने कोई स्मृति पढ़ी नहीं है, और जिसने स्मृति नहीं पढ़ी हो वो लोग तो फिर वेद आदि पढ़ा है, जो वेद को जानते हैं इसलिए वेद वेदांग को जानने वाले लोग वैदिक यज्ञ आदि कराते हैं, बड़े बड़े जजमानों के यहां जाकर और खूब दक्षिणा ले आते हैं, और उनके द्वारा दिए गए दक्षिणा से उनका अपना योगक्षेम चल जाता है। मैंने वेद भी नहीं पढ़ी है और यज्ञ मैं क्या कराऊं, हैं? मैं किसी जजमान के यहां रुद्री कराने जाऊं तो वेद ही नहीं पढ़ा है तो मुझे रुद्री नहीं आती है, तो मैं कैसी जजमानी करूं और अपना योगक्षेम चलाऊं भाई। स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये, ठीक है, शास्त्र वेद आदि का पूरा नहीं जानते हो, लेकिन जड़ी बूटी रसायन को तो कुछ ज्ञान रखते हो ना, वैद्यकीय, तो कोई बीमार हो गया तो उस अनुभव का प्रयोग करके, कोई बीमार है उसका रोग दूर हो गया, निदान हो गया, तो उससे जो मिलेगा उससे योगक्षेम चला लेगा वो। मुझे वो वैद्यकीय शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति का भी कुछ ज्ञान नहीं है, तो मैं कैसे अपनी रोजी रोटी करूं, कैसे योगक्षेम करूं। शकुना, शकुन माने शुभ मुहूर्त आदि, शकुन शास्त्र, लोग कहते हैं ना आंगन के ड्योढ़ी में कोई काक क्या क्या करने लगा, लोग उसकी भाषा को संकेत को समझते हैं, हाँ, ते आ ये काग इस तरफ बैठकर इतनी बार कहां कहां किया तो इसका मतलब ये शुभ समाचार है, और काग इस तरफ बैठकर इतनी बार कहां कहां किया इसका मतलब ये अशुभ समाचार है, इसको शकुनस बोलते हैं, शकुन ज्ञान। हाँ, क्या शुकन, हाँ उसी को संस्कृत में शकुन कहा, तो शकुन शुकन, वो भी मुझे ज्ञान नहीं है, हाँ? बिल्ली दाहिनी से निकली तो उसका क्या होगा, बाएं से निकली तो उसका क्या होगा, आगे से गई तो उसका क्या होगा, ये ज्ञान शुकन ज्ञान है। खाली घड़ा वाला सामने आ गया तो अशुभ हो गया, तुम लोग मानते हो कि नहीं है? यात्रा में कोई खाली घड़ा लेकर खड़ा हो गया तो फिर वो अवशकुन हो गया, कोई भड़ा भरा हुआ घड़ा लेकर खड़ा हो गया तो शुभ शकुन हो गया, ये ज्ञान भी मुझे नहीं है। रात को ये स्वप्न देखा इसका फल ये होगा, हाँ, इतनी बजे देखा था उसका ये फल होगा, प्रातः काल देखा था कि मध्य रात्रि में देखा था कि सोते ही देखा था कि उठने से पहले देखा था कि है उसका क्या फल होगा, एक ही स्वप्न का एक ही फल नहीं होता है, किस समय देखा इस पर भी निर्भर करता है, हाँ, इस पर भी निर्भर करता है। यदि रात को स्वप्न तुमने देखा प्रातः काल कोई सर्प आया और तुमको टोक लिया, काट लिया उस सर्प ने और खून निकल गया, तब माला माल, बस माला माल। एक सर्प को तुम पाल के रखना और कहना, हे सर्प ठीक सुबह के समय में तुम मेरे सामने आना और मुझे टोकना काटना, लेकिन स्वप्न में हो, क्योंकि महात्मा ने कहा है माला माल ले जी, लेकिन तुम्हारे कहने से सर्प आएगा? वो अपनी मर्जी से आएगा, है? देख लो ऐसा। कहीं यदि यात्रा में निकलो मरा हुआ शरीर के अर्थी जाते हुए देखा तो बहुत शुभ माना जाता है, लेव जी स्वप्न में, जागृत में भी अर्थी दिखाई पड़ी मृत्यु शुभ माना जाता है। इसको कहते हैं सुकन शास्त्र। हाँ, उसका भी मुझे ज्ञान नहीं है तो मुझे कौन पालेगा? स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुन कविता गान फणितौ। मैं इतना विद्वान भी नहीं हूं कि किसी को प्रशंसा करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए बढ़िया बढ़िया कविता लिखूं और वो कविता सुनाऊं, उस सुनकर प्रसन्न होकर वह कुछ दे। राजा भोज के नवरत्न थे, है? राजा भोज के नवरत्न सुना है कि नहीं? राजा भोग बड़ा भारी विद्वान था, लेकिन राजा था, और बड़े बड़े विद्वानों को, नौ विद्वानों को उसने राजपुरोहित बनाकर रखा था, और सभी से एक ही काम था सभी का कि बढ़िया सा बढ़िया राजा की प्रशस्ति लिखो, कविता लिखो और राजा को सुनाओ। हाँ, काव्य सरिता, काव्य गोष्ठी होती थी। कहते उन नवरत्नों में एक रत्न कालिदास, हाँ, दूसरा रत्न बाघ, बाघ भट्ट, हाँ, ये ऐसे ऐसे कई रत्न थे। तो कहते हैं उसका नियम था, जो कविता सुनाएगा, सबसे बढ़िया कविता सुनाएगा, उसको एक सुवर्ण सर्पी देता था राजा भोज। तो हमेशा कालिदास तो था ही, वो ऐसी कविता रचना कर देता था कि और की कविता फेल। कालिदास को रोज एक सुवर्ण मुद्रा मिल जाए, सब लोगों को उसकी ईर्ष्या हो गई, ये कालिदास रोज इनाम ले जाता है, हमको कुछ नहीं मिलता। तो कालिदास जी इस बात को समझ गए कि मेरी इस सफलता को देखकर ये अन्य कवियों को ईर्ष्या हो गई है, ऐसा करता हूं एक हफ्ता मैं नहीं जाऊंगा, कल मैं नहीं जाऊंगा, सभा में जाऊंगा ही नहीं। हाँ, जाएं वो लोग जाएं, तो बोले सब कवियों को, देखो भाई कल हम नहीं आएंगे, हमारा काम है घर में, मेरी पत्नी कह रही है एक महीने का राशन खत्म हो गया है? कालिदास के गुरु तो उसी की पत्नी है ना, तो गुरु की सेवा करनी है कि नहीं? एक महीने का राशन खत्म हो गया, तो कल हमारे को राशन खरीदने का दिन है, हम तो राशन खरीदने, तुम लोग कविता बनाना ले जाना और राजा को सुनाना, पुरस्कार ले लेना तुम लोग, कविता ले लेना, कविता सुनाना, पैसा ले लेना। आप तो उन लोगों को मौका मिल गया कविता की लिखना है, सब मिलकर कविता लिखने शुरू किया। किसी एक के दिमाग में स्फुरण ही नहीं होती है, कभी काव्य का विषय कविता का भाव ही स्फुरण नहीं हो रही है, क्या करे? तो अकेले अकेले तो कविता पूरा होना था नहीं, सब मिलकर एक कविता बनाओ और उसको सुनाए और उससे जो मिलेगा हम सब लोग बांट लेंगे, ले जी चलो वही सही। तो बोले ठीक है कविता लिखो, तू लिख शुरू तो कर। हाँ, तो एक ने कहा, अरे राजा के यहां जाएंगे लेट होगा, भूख लगती है हमेशा, राजा से सबसे पहले तो भोजन की कामना करनी है भाई। भोजनम देही राजेंद्र, आगे फिर दिमाग में कुछ भी नहीं आता है, है? है? कुछ भी नहीं आ रहा है। दूसरे ने कहा कि अच्छा एक वाक्य तो तूने लिख दी, दूसरा वाक्य मैं लिखूं? बोले हां, क्या लिखना है? साक सूप समन्वित, भोजन तो हो खाली भात नहीं, बढ़िया सब्जी भी हो, बढ़िया दाल भी हो, अचार और चटनी भी हो, सब्जी भी हो, सब हो। एक लाइन पूरी हो गई, दूसरी लाइन तो नहीं, दो लाइन पूरी हो गई, भोजनम देही राजेंद्र एक लाइन, दूसरी लाइन साक सूप समन्वित। हाँ, दो लाइन पूरी होगी, चार लाइन की कविता है। अब दो लाइन कौन पूरा करेगा? उसको कहे तू पूरा कर, नहीं आ रहा है। उसको कहे तू पूरा कर, जाने दो, ये कविता लिखना भी एक झंझट का काम है। सब लोग छोड़ दिए, आधा कविता लिखी दो लाइन की, छोड़ दिए। कालिदास को पता चला ये कविता लिख नहीं पा रहे बेचारे, जाके उन्होंने दूसरी दो लाइन उन्होंने अपने तरफ से लिख दिया। क्या लिखा पता है? माही संच शरत चंद्र चंद्रिका धवला ददी, ये वाक्य लिख दिया। अरे भाई भोजन हो, दाल और सब्जी हो, अचार चटनी हो, लेकिन दही न हो तो फिर क्या? दही की विशेषता देखो, विशेषण क्या है, कैसा दही? माही संच, भैंस का दही, गाय का नहीं। दूध पीना हो तो गाय का, और दही खाना हो तो भैंस का हो। माही संच, कंडीशन रख दिया, भैंस का दही कैसा? शरत चंद्र चंद्रिका धवला दधी, शरद ऋतु के जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा के जो पूर्ण चंद्रमा का जो स्वच्छ सफेद धवल है, वैसा ही सफेद दही चाहिए, भैंस का दही भी जोड़ देना। अब शरद चंद्र चंद्रिका धवला दधी, ये श्लेष, ये विशेषण तो कालिदास के बाद और कोई नहीं लिख सकता है। कालिदास जी ने कह दिया कि जाओ सुनाओ, और जो पुरस्कार देगा वो तुम लोग बांट के ले लेना, हम कल नहीं जाएंगे। गए सभी पंडित लोग, बोले आज कालिदास नहीं आया, बोले आज उसकी पत्नी ने आटा दाल खरीदने का कह दिया है, वो नहीं आ रहा है। तो बोले आज हम लोग आए हैं, कविता लाए हो? बोले हां, सुनाओ। एक पंडित खड़ा हुआ, विद्वान, सुनिए हम भी कवि है, क्या कविता है सुनाओ। भोजनम देहि राजेन्द्र शाक सूप समन्वित, माही संच शरत चंद्र चंद्रिका धवला दधी। राजा भोज ने तो, वो तो बड़ा पारखी था, बोले ये कविता तुम लोगों ने लिखी है? हां महाराज, पूरी कविता तुम लोगों ने लिखी है? आप तो डरने लग गए सब, सब घबरा गए। ये राजा तो पारखी था कविता का, काव्य का, तुम लोगों ने लिखी हो भले लिखा हो, लेकिन पुरस्कार पाने का हक तो कालिदास को ही है। ये दूसरी लाइन, तीसरी और चौथी लाइन तो उत्तरार्ध तो कालिदास ने ही लिखा है, ईमानदार से बोलो। हां सरकार, क्षमा करना, माफ करना। देखो कालिदास में वो कला थी, इसलिए वो अपना योगक्षेम चला रहा था। शंकराचार्य जी कहते महाराज मुझ में वो कला नहीं है, तो किसी राजा को प्रसन्न करने की वह कला भी नहीं है, तो मैं अपने योगक्षेम कैसे चलाऊं? स्मृतौ शास्त्रे वैद्य शकुन कविता गान पणितौ पुराणे मंत्रे वा। और पुराण का ज्ञाता भी नहीं हूं, सब पुराण का ज्ञाता कौन है बोलो? पुराण की व्याख्याता कौन है, कथाकार कौन है? वेदव्यास कथाकार नहीं है, रचनाकार है। कौन? सुखदेव जी सभी पुराण के व्याख्याता नहीं है, सूत जी। सौनक तो श्रोता है, हाँ सुखदेव जी भी सभी पुराण के व्याख्याता नहीं है, भागवत के व्याख्याता है। सभी पुराणों के व्याख्याता कौन है? सूत जी, वेदव्यास जी के परम शिष्य सूत जी। सूत जी तो सभी पुराणों की व्याख्या करते हैं, क्योंकि सारे पुराण वेदव्यास से पढ़ा है और व्याख्या करने में बड़े चतुर हैं। अब मैं सूत जी जैसा नहीं हूं, इसलिए पुराण का ज्ञान भी मुझे नहीं है। कथा करो और पैसा कमाओ है, वो कला मुझ में नहीं है। पुराणे मंत्रे वा, मंत्र तंत्र भी नहीं जानता हूं मैं। स्तुति नटन हास्य सुचतुर, ठीक है विद्वान होने के लिए तो ये सारी चीज चाहिए, लेकिन यदि तुम विद्वान नहीं हो तो नाच तो सकते हो, बोले नहीं महाराज, मैं नाचना भी नहीं आता है, स्तुति गान भी करना नहीं आता है, है? आप लोगों को यही श्लोक को तुम गाओ कहो तो क्या मेरे स्वर से स्वर मिलाकर गा पाओगे? गा पाओगे? बुरा नहीं मानना, आप और हम अलग अलग गाने शुरू करें, अलग अलग गाने शुरू करेंगे तो कोयल और गधे की आवाज निकलेगी। बुरा नहीं मानना, हो स्तोत्र कविता गाने की भी स्वर कला है, संगीत की, वो मुझे ज्ञान नहीं है। दूसरे के लिखी हुई कविता भी गाना चाहिए, गाना आना चाहिए, तो उसके स्वर से भी प्रसन्न हो जाएंगे और योगाक्षम ऐसे ही चल जाएगा। मुझे वो भी नहीं आता है तो गाना नहीं आता, नाचना तो आता है मूर्ख, मुझे नाचना भी नहीं आता है। इसलिए हमेशा जब नाचने के लिए मैं खड़ा होता हूं स्टेज टेढ़ा ही होता है, है? नाचने जो नहीं जानते हैं उनके लिए आंगन हमेशा टेढ़ा होता है, नहीं कहा होता है कि नहीं, नाचने नहीं जाने आंगन टेढ़ा है। हास्य कोई चुटकुला भी सुनाने मुझे नहीं आता है, जो चुटकुला सुना के लोगों को मनोरंजन करूं वो भी नहीं आता है मुझे भाई। अचतुरा, ये अचतुरा का सब जगह अन्वय करते जाना, स्मृत हो अचतुरा, कुशल नहीं हूं मैं, कुछ भी नहीं आता है चतुरता की तो बातें ही छोड़ दो। तब मेरे सामने ये संसार के मर्तलोक के मरण धर्म राजा कैसे प्रसन्न होंगे और मेरा योगक्षेम कैसे चलेगा? कौन पालेगा मुझे, कौन देगा मुझे जीने के लिए राशन पानी? स्मृत शास्त्रे वैद्य सकुन कविता गान फणित पुराणे मंत्रे व स्तुति नटन हास्य स्वचतुरा कथम राज्ञाम प्रीतिर्भवति मयी। और दूसरी बात, तब जब तक जीवोगे जीने के लिए योगक्षेम की उपलब्धि मुझे कहां से होगी? और दूसरी बात, मैं पशु हूं हाँ, और आप पशुपति हो, मैं पशु हूं आप पशुपति हो। शिवजी ने कहा कि तू पशु कैसे, तू तो मनुष्य है। बोले पशु की परिभाषा आपने क्या किया महाराज, जो पास से बंधा हुआ होता है वो पशु होता है हाँ? पास बद्धो ही पशव पास पंचविधो स्मृतम, ये जो पास से बंधे उसका नाम पशु। और जीवात्मा पांच पासों से बना हुआ होने के कारण हर जीवात्मा पशु है हाँ। और सबसे बड़ा पशु का लक्षण तो यह है कि जो अपने को न जाने वो पशु है, समझ गए कि नहीं? जो अपने को जाने वो पशुपति, जो अपने को न जाने वह पशु। को अहम, मैं कौन हूं ये मुझे पता नहीं है, मैं अपने को नहीं जानता हूं, यही प्रमाण है कि मैं पशु हूं। वेदांत ने यही परिभाषा की है वो, और इसी के चलते आप पशुपति है क्योंकि आप अपने को जानते हो इसलिए पशुपति हो, मैं अपने को नहीं जानता हूं इसलिए मैं पशु हूं। पशु माम सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ हे सर्वशक्तिमान, माम पशुम प्रथित मत्वा जानकर प्रसिद्ध, आप सर्वज्ञ हैं ये बात प्रसिद्धि है, आप सर्वशक्तिमान हैं ये भी प्रसिद्धि है, आप अहेतु का कृपा सिंधु हैं ये भी प्रसिद्धि है। प्रथित का अर्थ प्रसिद्ध, सारे तीनों लोक में आपकी बड़ी प्रसिद्धि है, करुणा वरुणालय अहितुक दया सिंधु कृपा सिंधु हाँ? कृपया पाम पालय विभो, ये व्यापक कृपा करके मैं पशु हूं, अपने आप को भी पालने की क्षमता मुझ में नहीं, क्योंकि अपने आप को पालने की क्षमता तो उस पे है जो शास्त्र को जानता है, वो अपनी कला का है, अपनी बात चातुर्यता के, जो नाचने जानता है वो अपनी कला का प्रदर्शन करके योगक्षम करेगा, कोई कविता गान करके करेगा, मुझे कुछ भी नहीं आता है, अज्ञ हूं मैं, को हम, मैं अपने को कुछ नहीं जानता, इसलिए मेरे पालन करने का योगक्षेम की जिम्मेवारी हे शिव आप पर निर्भर है, इसलिए माम पालया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

सरस्वती पतये हर हर महादेव। ओ ओ ओ आदि गुरु शंकराचार्य विरचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग चल रहा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्य

0: समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वासवस्थास्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वायये सपुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये भूरं भांस्य नलो नीलोऽम्बरमहर् सीमांशोपमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यस्तकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत् पुनरस्तथा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्।
1: आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विरचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग चल रहा है। इस स्तोत्र में आज अंतिम स्तोत्र यानी दसवां श्लोक सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितम् स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरस्तदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्।
2: कुछ लोगों को ये कहा जाए कि तुम वेदांत श्रवण किया करो, सत्संग किया करो, वेदांत श्रवण करो, तो पहला प्रश्न होता है उनका कि इससे क्या फायदा होगा। इससे पहले ये बताया गया था आठवें श्लोक में स्वप्ने जागृति वा ये सपुरुषो माया परिभ्रामितः। भगवान शिव की जो शक्ति रूपा है अनिर्वचनीय माया, उस अनिर्वचनीय माया से भ्रमित हुए हुए जीव एक अभिन्न शिव तत्व परमात्मा तत्व में अनेक प्रकार की कल्पना कर बैठते हैं और ये सारा जगत इसी कल्पना में टिका हुआ है। किस प्रकार की कल्पना करते हैं? वह कार्य कारण भाव की कल्पना करते हैं। एक अद्वितीय ब्रह्म में कार्यकारण भाव संभव ही नहीं है, फिर भी कार्यकारण भाव का कल्पना करते हैं। ये माया कल्पित, माया भ्रामित, माया के द्वारा भ्रमित हुए हुए व्यक्ति कार्यकारण भाव की कल्पना करते हैं। उसी प्रकार के स्वस्वामी संबंधतः
1: इस माया के चलते ही स्वामी और सेवक भाव की कल्पना करते हैं। परमात्मा स्वामी है और हम उनके सेवक हैं। वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, हम अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान हैं। उसी के माया के ही भ्रमित होकर ये भी कल्पना करते हैं, शिष्याचार्यतया, गुरु शिष्य भाव की कल्पना करते हैं और उसी के चलते पितृ पुत्रादि भाव, पति पत्नी आदि भाव, एक अद्वितीय ब्रह्म में कौन भोक्ता और कौन भोग्य, कौन कार्य और कौन कारण, एक अद्वितीय ब्रह्म में कौन जनक और कौन जन्य। वास्तव में ऐसे होते हुए भी माया परिभ्रामिता, माया के द्वारा भ्रमित होने पर इस प्रकार की सारी कल्पना कर लिया करते हैं। और ये भेद कल्पना कब तक है, इस भेद कल्पना का कारण क्या है और ये भेद कल्पना कब तक है, इसके लिए बता रहे हैं कि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक ये भेद का नाश नहीं होगा, भेद का व्यावर्त नहीं होगा, ये भेद बना रहेगा। इस समस्त भेद का जो मूल कारण है माया, उसका परिहार करना बहुत जरूरी है। कैसे होगा तो कल संकेत किया गया था, इसके लिए माया में दो शक्ति हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। अद्वितीय ब्रह्म तत्व के भाव को आवृत करने के चलते उसी एक परमात्मा में विक्षेप शक्ति से द्वैत भाव को खड़ा कर दिया है, गुरु शिष्य भाव को खड़ा कर दिया है, कार्य कारण भाव को खड़ा कर दिया है, स्वामी सेवक भाव को खड़ा कर दिया, पिता पुत्र भाव को खड़ा कर दिया है, पति पत्नी भाव को खड़ा कर दिया है। अद्वितीय में कोई संबंध नहीं है, फिर भी अनेक संबंधों को खड़ा कर दिया है, भोक्ता भोग्य भाव को खड़ा कर दिया है। दो कारणों से ये होता है, एक तो सदअंश को आवृत कर देने से विक्षेप शक्ति में नाशवान परिवर्तन, दृष्ट नष्ट जगत की उत्पत्ति विक्षेप शक्ति से कर देती है। इसी प्रकार से चिद अंश का आवरण कर देने पर जड़ांश जगत की उत्पत्ति होती है, जड़ भाव दिखा देता है। ये माया की विशेषता है, विपरीत भाव को खड़ा कर देना, ये माया का एक खेल है। सदंश को ढककर अनित्य अशाश्वत नाशवान भाव को खड़ा कर देना, चिदंश को ढककर उसी चिदंश में जड़ भाव को खड़ा कर देना, आनंद अंश को ढककर उस आनंद अंश में ही दुख भाव को खड़ा कर देना, अद्वैत अद्वितीय अंश को ढककर उसी में द्वैत भाव अनेक भेद भाव को खड़ा कर देना, ये दोनों काम माया करती है अकेले। एक अंश को ढके बिना दूसरे अंश को उत्पन्न नहीं कर सकती माया, अधिष्ठान के स्वरूप को ढके बिना अध्यस्त स्वरूप को उत्पन्न नहीं कर सकती है, दृष्टि के यथार्थ स्वरूप को ढके बिना सर्प भाव उत्पन्न नहीं कर सकती, सीपी के यथार्थ भाव को स्वरूप को ढके बिना चांदी भाव की उत्पत्ति चांदी भाव खड़ा नहीं कर सकती है माया, मरुभूमि के यथार्थ स्वरूप को ढके बिना जल भाव को खड़ा करना संभव नहीं है। इसी प्रकार के सच्चिद आनंद अद्वितीय ये चार भाव जो परमात्मा का स्वरूप लक्षण माना जाता है, उन चारों भाव को खड़ा करके माया उसी में ठीक उसके विपरीत चार भाव खड़ा कर देती है, चार भाव को आवृत करके इन्हीं ठीक उसके विपरीत चार भाव को खड़ा कर देना माया का खेल है। तो ये सब माया की निवृत्ति कैसे होगी,
2: तो बोले उसी की उपासना करो, उस परमात्मा की उपासना करो तो उसकी कृपा से माया का यह आवरण हट जाएगा। इसीलिए कठोपनिषद में कहा है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मे दया न बहुना श्रुते न इमे वेसे वृणुते तेन लभ्य कस्से सा आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। आदिगुरु शंकराचार्य ने दो प्रकार की व्याख्या की इस मंत्र की व्याख्या में। कहा है कि जो मुमुक्षु परमात्मा को पारमार्थिक सत्य के रूप में स्वीकार करता है तो वह स्वीकार करने वाला मुमुक्षु उसी रूप में उसको प्राप्त करता है। जिसको जो व्यक्ति परमात्मा को जिस रूप में वर्णन करता है वह व्यक्ति उस परमात्मा को उसी रूप में प्राप्त करता है। एक अर्थ तो ये कर दिया, एमे वे सब गणते थे न लभ्य, और दूसरा अर्थ कर दिया है कि परमात्मा जिसको वर्ण करते हैं तो वही परमात्मा के स्वरूप को अनुभव कर पाता है। ये परमात्मा की कृपा पर निर्भर होता है, ईश्वर कृपा पर निर्भर होता है साधक परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा। यदि ईश्वर इच्छा हो गई, ईश्वर की कृपा हो गई तो प्राप्त कर लेगा, और नहीं होगी तो प्राप्त नहीं कर लेगा। इसका मतलब पूरी तरह ईश्वर में निर्भर रहना पड़ेगा ये भी बात नहीं, इसका अर्थ बदल दिया है। मुमुक्षु परमात्मा को स्वीकार करेगा, परमात्मा इस रूप में है और मुझे इसी रूप में परमात्मा का अनुभव करना है, वह वर्ण कर लेगा इस रूप में तो अपने भाव के अनुसार वर्णीय तत्व को वो अनुभव करेगा। सगुण साकार का वर्ण करेगा तो सगुण साकार का ही अनुभव करेगा, सगुण निराकार को वर्ण करेगा तो सगुण निराकार को ही अनुभव करेगा, और निर्गुण निराकार का वर्ण करेगा तो वह निर्गुण निराकार का ही अनुभव करेगा। तो यमे वेसा वृणुते न लभ्य कस्य सा आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, तनुम स्वरूपम स्वाम विवृणुते। मुमुक्षु अपने ही स्वरूप का अनुभव करता है, या मुमुक्षु परमात्मा के स्वाम स्वरूपम विवृणुते प्राप्त करा देते हैं, अनुभव करा देते हैं। ये कठोप श्रुति है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ गीता में भी कहा है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम ये वही प्रपद्यंते माया में ताम तरंती ते। अर्जुन मेरी ये त्रिगुणात्मिका जो माया है वह यूं तो दुरत्यया है, मेरे अलावा कोई भी इसको हटा नहीं पाता है, मेरे अलावा कोई इसको हटा नहीं पाता, क्योंकि ये मेरी माया है, जीवों की माया नहीं है। जीवों की माया होती तो जीव हटा लेते, जीवों की माया तो है ही नहीं है तो जीव कैसे हटाएंगे उसको। तो मेरी माया है इसलिए उसको हटाना रखना पूरी तरह मैं सक्षम हूं। मम माया दुरत्यया दुखे न अत्यय तुम सक्य दुरत्यया दुरत्यया माया, तुम अपने बलबूते पर यदि इसको हटाना चाहो नहीं हटा सकते हो, फिर कौन हटाएगा महाराज। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती, मेरे शरण में मेरी प्रतिपत्ति जो स्वीकार कर लेता है तब वह मेरी कृपा से वह माया उसको हटा देती है, माने छोड़ देती है। दो बात है, मैं हटा देता हूं या माया खुद छोड़ देती है। माया भी समझती है कि ये किसका व्यक्ति है, समझ गया ना। माया भी ये समझती है, विचार करती है पहले कि ये किसका आदमी है। यदि ये परमात्मा का आदमी है तो माया छोड़ देती है, ये तो अपने मालिक का ही सेवक है। ये व्याख्या कर दो तो वैष्णव लोग बड़े खुश होते हैं, आहा स्वामी जी ने आज क्या सुंदर हमारे सिद्धांत की व्याख्या कर दी है। परमात्मा का जो भक्त है वह माया ये जानती है कि परमात्मा का भक्त है तो माया कहती है तो हमारे स्वामी का ही सेवक है, दास है, ये तो अपना ही व्यक्ति है, जाने दो इसको। व्यवहार में भी तो यही होता है कि नहीं, आप लोगों के ये तो अपना व्यक्ति है, जवा दो अपना मानस है, आप लोग बोलते ही हो जवा दो अपना मानस है। दूसरी बात है माया खुद छोड़ देती है। पहली बात है कि परमात्मा माया से छुड़ा देते हैं, दूसरी बात है माया खुद छोड़ देती है। हाँ चाहे माया खुद छोड़ दे चाहे परमात्मा छुड़ा देवे, फल तो एक ही प्राप्त होगा ना। तो गीता का भी ये श्लोक है, इसलिए ईश्वर की उपासना करो। किस रूप में ईश्वर उपासना के लिए, यूं तो सभी ईश्वर भाव है, क्योंकि आगे का जो श्लोक है, नान्यत किंचन विद्यते विमृशताम, शंकराचार्य जी बोलते हैं, जब मैं वास्तव में जगत के पदार्थों के बारे में विचार करने लगता हूं, विमृशताम, अविचार भाव में कुछ भी तुम सिद्ध कर लो, लेकिन विचार के भाव में विचार करने लगता हूं, तब परमात्मा के अलावा दूसरा कोई पदार्थ सिद्ध होता ही नहीं है। नान्य चिंतन विद्यते विमृशताम, विचार करने वालों को। यहां भले ही आप लोग बहुत अलग अलग बैठे हुए हो और अलग अलग ढंग के कपड़े पहन रखे हो, जब तक विचार न करोगे तो तब तक लोग अलग अलग कहेंगे कि इसने इस प्रकार का कपड़ा पहन रखा है, इसने इस प्रकार का कपड़ा पहन रखा है, लोग अलग अलग व्याख्या करेंगे। लेकिन जब विचार किया जाए तो सबके कपड़े एक ही प्रकार का है, किसी के कपड़े में कोई भिन्नता नहीं है, विमृशता, क्योंकि सारे सबके सबके कपड़े में सूत समान रूप में विद्यमान है या कपास समान रूप में विद्यमान है। तब विमृशन यानी विचार करते हैं तो कपास के लेवल में जब आप पहुंचते हो तो ये पता चलता है कि किसी के कपड़ों में भिन्नता है ही नहीं, और भिन्नता तो है ही नहीं, कपास के अलावा तो कुछ है ही नहीं। नाम और रूप यथार्थ तो होता तब न भिन्नता होती, तो नाम रूप तो यथार्थ है ही नहीं, उसी एक यथार्थ कपास में तुम कल्पना करके तुम कुछ भी कर लो, धोती कर लो, पैंट कहो, पजामा कहो, कुर्ता कहो, टी शर्ट कहो, साड़ी कहो, ब्लाउज कहो, कुछ भी कहो, चाहे सब एक ही कपास में सारे भाव की कल्पना है। कपास के अलावा और भिन्न सत्ता किसी की न होने पर ये कहते हैं कि जब विचार करता हूं तो परमात्मा की सत्ता के अलावा जगत में कोई भिन्न वस्तु मुझे प्रतीत ही नहीं होता है। कल हमने संकेत किया था, पुष्पदंताचार्य जी ने भी शिवमय स्तोत्र में संकेत कर दिया है इसी बात को। भूरम भांस नलो नीलो अम्बरम हर नाथो हिमांशु पुमान इत्याभाति चरा चरात्मक इदम यस्यैव मूर्ति अष्टकम्। क्योंकि यूं तो सभी पदार्थ परमात्मा के अभिव्यक्ति या परमात्मा के अनुभूति का आलम्बन है, दो चीज ध्यान रखना, नाम रूप परमात्मा के आलम्बन है, क्योंकि अनाम का जो अभिव्यक्ति है नाम के माध्यम से होता है, अरूप की अभिव्यक्ति रूप के माध्यम से ही होता है, इसलिए आलम्बन कहा गया है, क्योंकि अरूप रूप में माने रूपवान में प्रकट होता है, इसलिए इनको समस्त रूपवान को क्या कहा, आलम्बन का, परमात्मा का आलम्बन है ये। यूं तो सभी परमात्मा के ही रूप होने के कारण सभी में परमात्मा भाव विद्यमान है, लेकिन सर्वसाधारण को सभी में भगवान शिव यानी परमात्मा भाव सर्वसाधारण को नहीं बनता है। सामान्य चीज, सामान्य उदाहरण लो, थोड़ा सा हीन उपमा देना चाह रहा हूं। आपके सामने जब भोजन की थाली आती है, अलग से भात होता है, रोटी होती है, सब्जी होता है, आम रस होता है, श्रीखंड होता है, पूरी होती है, है अलग अलग चटनी सब्जी, अनेक प्रकार के भोजन जब सज कर आता है तो कोई भी पूछेगा कि ये क्या है, थाल में इस तरह सजाया हुआ है, तो बड़े प्रेम से कहता है कि ये तो भोजन है, ये भोजन है। और वहीं पर उस भोजन के पश्चात की जो विष्ठा है उसको रखा जाए तो कह ये क्या है, छी छी छी छी छी, जबकि उस विष्ठा में भोजनत्व का बाद नहीं हुआ है। बात समझ गया, वो जो विष्ठा है वो मल है, उसमें भोजनत्व का बाद नहीं हुआ है, भोजनत्ता यथावत विद्यमान है, भोजन अभोजन कब होगा ये तो सब तुम्हारी कल्पना है।
1: तुमको जो इच्छा लगा अच्छा लगा उसको भोजन कह दिया, तुमको जो अच्छा नहीं लगा वो अभोजन कह दिया। भोजन तो भोजन है, यदि उसमें भोजनत्व तो नष्ट हो गया होता तो किसी भी कुत्ते और सुअर सुअर भूंड बोलते हैं गुजरात में है? सुकर पता नहीं उसको सुकर क्यों कहा, करता तो सब कु कर ही है, सु तो कुछ ही नहीं करता, इसलिए चलते समय सु सु करता है, इसलिए शायद उसको सु कर कहा होगा। हाँ, सु सु करो ती सुकर, सुकर शब्द तो अच्छा करने वालों को भी सुकर कहा जाता है, सुस्तुम करो ती सुकर, और सुस्त तो कुछ भी नहीं करता है, जिधर जाएगा उधर ही गंदगी। आज तो सारे विश्व में तहलका मचा रखा है स्वाइन फ्लू है ना, स्वाइन फ्लू उसी के तो सुकर उसी के वंशज है ना, ये सब विज्ञान तो यही कह रहा है, वहीं से निकले हैं, उसी से पैदा हुए, उसी के संतति परमाणु है ये जीव, मनुष्यों को सताने के लिए व्याप्त हुआ हुआ है, मार डाल रहा है, तो उसको क्या सुकर कहेंगे। उसके शरीर से निकलने वाले जीवाणु मनुष्य के लाइफ को एक्सटेंशन कर दे तो सुकर है, वो तो जीवन को ही समाप्त कर दे हुए मनुष्यों को, तो क्या सुकर है उसको, तो इस अर्थ में उसको सुकर कहा होगा कि सु सु करता है। और शायद सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले उसने सु सु किया था, क्योंकि बराह अवतार लेकर उस परमात्मा ने उसी को ही आलम्बन करके बराह अवतार लेकर गायब हुई हुई रसातल में गई हुई पृथ्वी को खोज कर निकाला है, क्योंकि पृथ्वी गंधवती है और गंधवती पृथ्वी को ग्रहण करने की क्षमता घ्राण इंद्रिय में है, इसीलिए सुगर जो है सुकर जो है घ्राण से सु सु करता हुआ पृथ्वी को खोजता है।
3: ओम नमः शिवाय।
4: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
3: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Sundaramurthi Nayanar Puranam, presented by Sri Singapur Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम जिस महान संत या शिव भक्त की कहानी सुनेंगे उनका नाम सुंदरमूर्ति नायनार है। अपर यानी कि तिरुनावकासुर जिस तिरुमुनई पाड़ी क्षेत्र में अवतरित हुए थे उस पावन क्षेत्र के तिरुनावलूर में शैव द्विज कुल में चड़ेनार के पुत्र के रूप में नंबियारूर यानी कि सुंदरमूर्ति नायनार का जन्म हुआ था। नंबियारूर का विवाह पुत्तूर के चंड कवि शिवाचारी की पुत्री के साथ संपन्न होने वाला था कि विवाह मंडप में एक वृद्ध ने आकर विवाह संस्कार रुकवा दिया। उन्होंने एक ताड़पत्र दिखाया जिसमें नंबियारूर के दादा ने लिख कर दिया था कि वे और उनकी संतति उस वृद्ध के दास हैं। पंचायत में इस ताड़पत्र को दिखाकर ग्राम सभा में वृद्ध ने अपने पक्ष में निर्णय करवा लिया। यह एक विचित्र बात थी कि एक ब्राह्मण को दूसरे ब्राह्मण ने दास बना लिया। लोगों के पूछने पर कि वे ब्राह्मण कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, वे शिव मंदिर में जाकर अंतर्धान हो गए। नंबियारूर समझ गए कि मुझे दास बनाने वाला स्वयं भगवान ही है। उन्होंने वृद्ध के महत्व को जाने बिना उन्हें पागल विकंदावादी कहा था। इस पर वे पश्चाताप करने लगे। आरोरल के समक्ष पवित्र वेदों के उद्घोषक शिवजी ने आकाशवाणी की, चूंकि तुमने बड़े बड़े बोलों से हमें गाली दी थी इसलिए बड़बोले भक्त बनकर तमिल भाषा में हमारी स्तुति करो। नंबियारूर ने अपनी लघुता और प्रभु की महानता पर विचार करते हुए पूछा, तुम्हें किन शब्दों से मैं से गाऊं हे प्रभु? भगवान ने कहा, तुमने मुझे पागल कहा था इसलिए उसी नाम से प्रारंभ करो। इस आदेश को स्वीकार करते हुए सुंदरमूर्ति ने स्तुति गान शुरू किया। पित्ता यानी कि पागल, पिरेचूड़ी यानी कि चंद्रकला धारण करने वाले, पिरमान मतलब हे महाप्रभु, इस वाक्य से उन्होंने अपने गायन की शुरुआत की थी। नंबियारूर समझ गए थे कि भगवान ने उन्हें अपने दास के रूप में स्वीकार कर लिया है और उनका उद्धार किया है। वे भिन्न भिन्न धामों में जाकर भगवान शिव का कीर्तिगान करने लगे। इसी क्रम में वे तिरुवारूर पहुंचे और भगवान के संकेत से देवदासी कुल में उत्पन्न परवयार नामक कन्या से विवाह करके वहीं रहने लगे। तिरुवारूर के प्रवास काल में नंबियारूर प्रतिदिन मंदिर में वाल्मीकि नाथ शिवजी के दर्शन के लिए जाया करते थे। मंदिर में प्रवेश करते ही वे द्वार से थोड़ी दूर बने देवाचार्य मंडप में रहने वाले भक्तों की वंदना किए बिना अंदर चले जा रहे थे। वहां बैठे विरन मिंडर नामक भक्त ने जब यह देखा तो घोषणा की, देवाचार्य मंडप में निवास करने वाले शिव भक्तों की वंदना किए बिना उनकी अवहेलना करने वाले बड़बोले भक्त को मैं बहिष्कार करता हूं और ऐसे भक्त को अपना दास बनाने के लिए ग्राम सभा में बात करने वाले भगवान को भी मैं बहिष्कार करता हूं। वास्तव में सुंदर स्वयं को प्रभु के दासों के चरणों के योग्य भी नहीं समझते थे, पर यह घोषणा सुनकर भक्तों के प्रति बार बार दंडवत प्रणाम करने के बाद उन्होंने फिर तोंडत हो गए यानी कि भगवान के भक्तों की मंडली का स्तुति गान किया जो कि तिल्लईवाल अंदनरतम अडियार कुम अडियेन पंक्ति से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है, मैं तिल्लई यानी कि चिदंबरम के निवासी भक्तों के दासों का भी दास हूँ। इस स्तुतिगान में प्राचीन काल के और अपने युग के भी 63 प्रभु भक्तों का नाम गुण सहित गायन कर उन्होंने रेखांकित किया कि मैं सभी भक्तों का दासानुदास हूँ। इसके बाद परवयार के साथ जीवन व्यतीत करते हुए सुंदरमूर्ति नायनार को चेरभूमि के भक्त भगवान के अनन्य सेवक वहां के नरेश चेरमान पेरुमाल की मैत्री का लाभ हुआ। ये अनेक बार वहां से चेरभूमि गए और उनके साथ कुछ समय व्यतीत कर तिरुवारूर लौटे। चेरमान पेरुमाल भी सुंदरमूर्ति से मिलने अनेक बार तिरुवारूर आए थे। विविध स्थानों पर जाकर प्रभु विग्रहों के समक्ष स्तुतिगान करते हुए सुंदर जब तिरुवोत्तियूर में पड़म पक्कनाथ शिवजी के दर्शन करके लौट रहे थे तो मार्ग में इनकी भेंट चंगिलियार नामक देलाल कुल की कन्या से हुई। चंगिलियार को पत्नी रूप में पाने की अभिलाषा प्रबल रूप से उनके हृदय में जागृत हुई। वे भगवान से इसके लिए अनुरोध करने लगे। अपने मित्र को संकट में फंसाकर उसी में आनंद लूटने की इच्छा से भगवान ने एक खेल खेला। चंगेलिया ने नंबियारों से कहा कि मैं इस शर्त पर आपसे विवाह करूंगी कि आप वचन दें कि मुझे कि मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा। नंबियारों ने प्रेमवश वह शपथ ले ली। विवाह हो गया। दिन ब दिन बीतते गए। एक दिन उन्हें स्मरण आया, तिरुवारूर में बसने वाले भगवान को, मेरे अपने मित्र को मैं कैसे भूल गया। वे तुरंत ही तिरुवारूर के लिए चल पड़े। शपथ का उल्लंघन करने के कारण तिरुवक्कीयूर की सीमा पार करते ही आरूर की दोनों आंखें दृष्टिहीन हो गईं। फिर भी त्यागेश शिव से मिलने के संकल्प में दृढ़ भाव से नंबियारूर अपने साथियों की सहायता से मार्ग के मंदिरों में स्तुतिगान करते हुए तिरुवारूर की ओर बढ़ते रहे। मार्ग में कांचीपुरम में देवी की कृपा से उनके बाएं नेत्र में ज्योति लौटी। इसके बाद तिरुवारूर पहुंचकर एक आंख से भगवान के दर्शन कर गीत दशक गाया। इसका मूल स्वर था, मैं किसी अन्य के पास न जाने वाला आपका सेवक हूं। जब आपके सेवक भक्त अपने कष्ट और संकट का निवेदन करते हैं तब आप मौन ही रहते हैं। हे तिरुवारूर के प्रभु, आप दीर्घायु हो। गीत दशक के समाप्त होते ही प्रभु कृपा से उनके दूसरे नेत्र की ज्योति भी लौट आई। इसके बाद उन्होंने चिरकाल के विरह से पुष्ट अपनी पत्नी परवियार को समझाने लगे कि स्वयं भगवान को अपने दूत के रूप में भेजा। परवियार के विरह जनित रोष को शांत करके फिर उनके साथ रहते हुए वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में कोयम्बतूर के पास अविनाशी में पाया कि एक बालक मगरमच्छ द्वारा निगला जा चुका था। प्रभु स्तुति के गीतों का गायन कर उन्होंने उस बालक को यमलोक से बचाकर मगर द्वारा वापस उगलवा दिया। बच्चे के माता पिता उनके गुणों का गान करने लगे। तदुपरांत सुंदर चेरमान परमाल से मिलने और उनके पास गए और कुछ दिन उनके सत्संग में रहे। चेरभूमि के मंदिरों और तीर्थ स्थलों के दर्शन करते हुए वे तिरुवंचिकुलम पहुंचे और भगवान की सन्निधि में तल्लैकुत तल्लैमाले से प्रारंभ कर 10 पदों का गायन किया। इन पदों में उन्होंने कहा, शिव ने मेरा सृजन किया, उस सृष्टि को के रहस्य को जानकर उनके सर्वनिम स्वर्णिम चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए मैंने गीत रचना की। क्या आश्चर्य, कुत्ते सम मुझे सम्मान देकर स्वर्ग निवासी देवताओं में मेरा आदर सत्कार किया। उसी क्षण उनके मन में हिलोक लीला समाप्त कर लेने की इच्छा उत्पन्न हुई। ईश्वर कृपा से तत्काल ही कैलाश से एक धवल वर्ण का हाथी आया जो कि पूरी तरह सफेद था। उस पर आरूढ़ होकर वे देवों के संग कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। इधर चेरमान पेरमाल ने ज्ञान योग से जान लिया कि मित्र सुंदरर कैलाश की ओर जा रहे हैं। वे भी तुरंत एक घोड़े पर सवार होकर तिरुवंचिकुलम पहुंचे और उस घोड़े के कान में पंचाक्षत मंत्र का उच्चारण किया। तुरंत वह घोड़ा भी श्वेत हाथी का पीछा करते हुए कैलाश की ओर चल पड़ा। दोनों कैलाश पहुंचकर शिव की दिव्य लीला में लीन हुए। इस घटना को एक सहस्त्र से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं, पर सुंदर के अलौकिक गुणों और महत्व को संसार अभी पूरी तरह जान नहीं पाया। वे प्रभु की सखा भाव से भक्ति करते थे। जो वेशभूषा अपने विवाह के अवसर पर प्रभु द्वारा दास बनाए गए जाने पर पहने हुए थे, जन्म भर उसी प्रकार की वेशभूषा में रहे। उनका काव्य तमिल के शैव भक्त साहित्य में विशिष्ट स्थान रखता है, पर खेद है कि आज उनके जन्मस्थान नावलूर के मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। उस महान भक्त की स्मृति संजोए रखने के लिए इन मंदिरों का पुनर्निर्माण और सम्यक व्यवस्था आवश्यक है। ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: काल ज्यादा बकवास करेगा तो मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा, जा भाग जा यहां से। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी निष्ठा ठीक है, तुमको शिव जी की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने पार्वती ने कहा कब, बोले अभी, ले जी कैसे, बोले ऐसे ये अपना रूप दिखा दिया वहां, तो ले अब तुझे यही चाहिए था ना, बोले हाँ धन्य हो, मुझे यही चाहिए बस, साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। ये सारी भाव इस श्लोक में है, हो भक्त का यही भाव है। सहस्रम वर्तन्ते जगति विबुधा क्षुद्र फलदः न मन्ने स्वप्ने वा तदनुसरणम तत्कृत फलम हरि ब्रह्मादीना अपि निकट भाजाम असुलभम चिरं याते शंभो शिव तव पदाम्बोज भजनम। ब्रह्मा जी आपके नजदीक तो रहते हैं लेकिन आपकी चरण की सेवा करने का उनको फुर्सत ही नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रह्मा ये न कुलालवन्यमितो ब्रह्मांड भांडोदरे। अरे ब्रह्मा जी के पास इतने जीवात्मा लाइन लगाकर खड़े पहुंच जाते हैं, एक जीवात्मा पहुंचता है हे परमात्मा मुझे शरीर दो, मुझे अब शरीर दो, जो शरीर आपने दिया था जिस कर्म फल को भोगने के लिए वो कर्म फल भोग चुका हूं, अब दूसरे कर्म फल भोगने के लिए मुझे दूसरा शरीर दो, और ब्रह्मा जी को तुरंत उसको शरीर बनाकर देना पड़ता है। समझे कि नहीं? तुरंत है। जब बरसात का सीजन शुरू होता है छाता बेचने वालों को फुर्सत होगा है? छतरी बेचने वालों को फुर्सत मिलेगा? रात दिन छतरी बेचने लग जाए। जब स्कूल आरंभ होता है तब स्टेशनरी बेचने वालों को फुर्सत होगा है? क्या कहते हैं स्टेशनरी बेचने वाले दुकानदार, क्या कहते हैं है? महाराज अभी फुर्सत नहीं है क्योंकि सब कॉलेज खुल चुके, एडमिशन का समय हुआ, स्कूल चालू हो गया है, ये बेचना है हमको, सप्लाई करना है, उसको देना है, उसको देना है, डिमांड का